नानक गुरमुख मिलहे वडिया ज्ञान जे आपे मेल मिलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी।

बन खंड जाए जोग तप कीनो, कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी शब्दी मोनी, जम के पटे लिखाया। भगत नार दी हृदय ना आई, काश कूश तन दीना, राग रागनी डिंब होए बैठा।

भया भिखारी अक्षत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म।

जुग मह धर्मा जन कौ नाम बडाई सोभ नामो गात नामो पत जन की माने जो जो होग रहाऊ।

वाम मांगौ राम ते सब थोक मानुख कौ जाचत श्रम पाइये प्रभ कै सिमरन मोख रहाउ कोखे मुन जन सिमर

कर नजर मेल मिलाया। कहन कह सब कोए के वड्याखी है, हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है।

अमल लुभाना जैन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सिरे वह खिन खिन जिन हर मीट

हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस

सुख आराधन दुख आराधन बिसरा ना काहूं बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा दिन सह परम अंधेरा, थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा।

परमेश्वर है, आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है। पेखन सुनन सुनावनो मन महेंद्रिय साच, पूर रहो सर्वतर मैं नानक हर रंग राच। पौड़ी हर एक निरंजन गाई है, सब अंतर सोई करण कारण।

बिखम थान हुंजिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जस है जन्म हार। सलोक

गए। सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग, हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहे विजोग। साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग। श्लोक कुटुंब जतन करण माया अनेक उदमह।

तिन प्रभ आप बुलायो रहाउ। हर कथा हर जस साध संगत सिउ, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगसियो पेख रंग कुसुम्ब को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल सिउ पाओ ना कीनो, नह सत पुरख मनायो। तावत कौ ताव है बहु भांति, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान इशनान ना

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो, तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिला।

हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे रहा जो

आई। ऐसा इस हर धन का शाहर आप है संत हो, इस हर धन का शाहर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर।

सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वडभा

आनंदिनो शब्द रवहो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गाव हो नारी आनंदिन भगत करहें गुर आ गए सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द बस

गाओ मंगलो नित हर जन हो पुन्नी इच सबाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती मरै न आवै जाई राम।

मान मोह मद सगल ब्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरिया पूर्ण काज हमारे गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो सगल

तह जन्म न मरना, तह जन्म न मरना आवन जाना, बहुण न पाइए जुनिए, नानक गुर परमेश्वर पाया, जिस प्रसाद इच पुनिए।

ज्यों हर पावै भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे काम। एक ना करम है दे वड्याई एक भरम भवै अभिमाना। बिलावल महला तीजा पूरा।

हर हर जगते पूरे परवाना कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चूके मन अभिमान कहत सुनत सबे सुख पावह मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

आए गुरमुख राते शब्द रंगाए निज करवासा हर गुण गाए रंग चलूले हर रस पहाए इहो रंग कदे ना उतरे साच समाए।

तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाए बस हो वड पागनी सखिए संतां संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन।

ही घट घट आप अलिपना आपे अवगत आप संगरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवां।

रहाउ। सोवत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत तृप्ता सया ताका अचरज स्वाद। आप मुक्त संगी तरे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं।

रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालयन जाका वड प्रताप। दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी, मन बांश फल दित्यन नानक बलिहारी। राग

दृष्ट दृष्टाए। अब महान खोए खोए खोई हों, मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अब महान खोए खोए खोई हों, मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अब महान खोए खोए खोए खोई हों, मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

मो बंध परे कहो नानक प्रभ होत दयारा गुर पेटै काढ़ै बाह फरे। बिलावल महला पंजवां।

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश पुछैया शरण परे से जन उबरे ज्यो प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम चंदन।

रख रख चरण हर ताल पुरैया हर कै रंग रत्ता मन गावै रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर धार चोवै।

राम। जिन मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंदेरा राम। हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम। गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया।

0: शब्द अमृत है, सब तृष्णा भूख गवाए,
1: हर रस पी संतोख हुआ,
0: सच वस्या मन आए, सच त्याए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाए,
1: सच्चो दहद स्पष्ट।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीध नाम संग मनुआ गीध नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

चार जना पग मल मल धोवै। पंचपूत जने एक माए, उठ भुज खेल कर जगत व्याए। तीन गुणा कै संग रच रसे, इनको छोड़ ऊपर जन बसे।

जोगी जुगत सहज कर वासै एक दृष्ट एको कर देखिया भीखिया पाए शब्द तृप्ता सह रहा।

तह हर हर हर रस भोगनी रहाव। सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी, आज्ञाकारी सदा सुख पुंचय। जत कत पेखों हर गुनी।

मिलावा हुआ। चंद सूरज दोए जरे चरागा, चहो कुंत पीतर राखे। दस पाताओ पंच संगीता, एक है पीतर साथे। पिन पिन होए भाव दिखावे, सब हो निरारी पाखे। कर कर

फलत फलत होहे दोहें सुहेले अचर्ज पुरख त्याओ रहाव उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब होव हमीत निर्मल तेरा होवै चीत सब ते उत्तम इहो करम सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म

गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ। ममता मार हो मैं सुख है त्रिभवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मने मह राखै सतगुर शब्द।

संत हो, सतगुर खेप निवाही संत हो, हर नाम लाहा दास कौ दिया, सगली त्रिशन उलाही संत हो। रहाओ।

सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो, जिस दिया ए बड़ियाइया, कहे नानक सुनहो संत हो, शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सपह गए, कर

परमा कंठ उरधारी है, उरधार हर हर पुरख पूरन, पार ब्रह्म निरंजनो, भय दूर करता पाप हरता, दुसह दुख भव खंडनो,

नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास ध्याएणा।

अंत प्रभ विपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया।

विचारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरमुख।

कंध। सहज गुफा कर जाने साचा, नानक साचे भावै साचा। किस कारण रह तजो उदासी, किस कारण इहो भेख निवासी। किस वखर के तुम वनजारे, क्यों कर साथ लंघावहो पारे। गुरमुख खोजत पए उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी। साच वखर

कवन मुख चंद हिवै कर छाया, कवन मुख सूरज तपै तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहै, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहै, कवन जोत जो काल संहारै, बोलै बाणी नानक बिचारै, शब्द भाखत सस जोत अपारा, सस कर सूर वसै मिटै अंधियारा।

बैरागी साच रखिया उर तहरे नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बिचारे।

शब्द रवै सब घट मेरे हों सबना अंदर जिस है खुआई तिस कौन कहे जिस है दिखाला वाटड़ी तिस है पुलावै कौन जिस है पुलाई पंध सिर तिस है दिखावै कौन महला पहला।

पौड़ी। मनमुख मोह गुबार है, दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है, नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है, मथ तत कढ़ोलै, अंतर प्रगास।

पौड़ी। जो तद पहाणा जंत सो तद बुझई, जो तद पहाणा जंत सो दरगह सिझई। जिसनो तेरी नजर हो मैं तिस गई, जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई।

जप मन राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साद आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

0: सुख है।
1: गुर सेवा सदा सुख है, जिसनो हुक्म मनाए। सोयना रूपा सब तात है, माटी रल जाई। बिन नावे नाल न चल्ली, सतगुर बूझ बुझा।

आनी मन हर भगती संग सीवना मात्या हर रस महराते तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलियो तिस सर्ब निध

मन मुख दाजै पढ़ पढ़ पाही, अमृत नाम गुरु वडदाना, नाम जप हो सुख सारा है, सतगुर तुठा सच दृढ़ाए।

सुख दुख हीते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा श्याम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

गुर बिन मुख मुक्त क्यों पाई, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है। गुरमत ले हो तरहो पवद उत्तर, मुक्त पय सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमत लेहो परम पद पाई, नानक गुर परम चुकाया। गुरमत

देखै अहनिस ज्योत निरंतर पेखै आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुर पूरै देखाया सतगुरु।

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जोग

भवत हेत गुण शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा। हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सबाया। जिन

यह भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मार गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत।

अंत सब किछु सूझै अज्ञानी अंध कमाई हे। मनमुख सहसा बूझ ना पाई मर मर जम्मै जन्म गवाई। गुरमुख

गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहा है गुरमुख।

कुसंगत बह है सदा दुख पावे दुखो दुख कमाया। सतगुर बाजहु संगत ना होई बिन शब्दे पार ना पाए कोई। सहजे गुण रव है दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उड है ना मूले ना आव है ना जाही निज घर वासा पाया। काया सुध है शब्द विच।

गुण निदान मन तन महरव्या, जन्म मरण की जोन ना पव्या, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

पाक खर शराशरयत ले कम्मा बहो त्रिकृत तर्क खोज टोला बहो मारफत मन मार हो अबदाला मिलो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कुतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द।